40 विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामान को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेडियो अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को यो पवित्र प्रसारणमा यहाँ सबै श्रोता साधकहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं श्रद्धा भाव युक्त नमन।

गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, यहाँ तक कि परमात्मा पर ब्रह्म ही गुरु है। ऐसे मेरे महान गुरु को मेरा नमस्कार।

प्रत्येक सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारो हिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: पहले यहाँ सुंदर यूनुंता एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू
1: कैप्टन रेग्मीज फार्म हाउस कमतान को बगैचा बेलकोटगढ़ी मदानपुर 12 देउराली
2: संपर्क नंबर
1: 9841470164
2: 9032445054
1: 9849528781

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

गामा वन टू थ्री फोर सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा मांगा रेसा सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरलो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: ¿Ahora qué le mando?
1: देखा सिक्किम माया लाउन आरिसे मरिजाउन तर तिमीलाई त म मायालाई छोड्दै छोड्दिन नि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सबै गरी।
1: FM AJ 104.8 MHz।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104।

0: राधाकृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधाकृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भेट सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: Together, we deliver.
1: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
2: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ।
1: त्यसैले
2: शुद्धता नै खोजौं।
1: जेजी ज्वेलर्स।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

मुल्ला नसरुद्दीन के पास से गधे थे। वो गधे था वो खो गया एक दिन। गधे खो गया तो वो भगवान को बहुत शुक्रान करता था, खुदा को भगवान बहुत धन्यवाद। लोगों ने बोला, अरे भाई गधा खो गया तो तुम इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हो? नहीं तो मैं भी खो जाता गधे। जब गधा खो गया उस वक्त तो मैं उसके ऊपर नहीं सवार था, अकल थी, तो खुदा को ईश्वर को मैंने शुक्रान दिया। उसी वक्त खोया गधा जब मैं उस पर नहीं था सवार। फिर वो खोजने लगा गधे को, खोजते खोजते कहीं मिला तो नहीं, मगर किसी ने कहा पहाड़ के उस पार है, चला गया, मैंने देखा तेरे गधे को। फिर वो शुक्रान देने लगा भगवान को, भगवान बहुत शुक्रिया। फिर भी सब जगह खोजने पर उसको गधा तो मिला ही नहीं, तो उसने दूसरे दिन ऐलान कर दिया, सब जगह नोटिस चिपका दी, जिसको भी गधा मिल जाए हमारी, उस गधे को भी उनका हो जाएगा, उसके ऊपर 1000 रुपया भी मैं दे दूंगा इनाम। इनाम के साथ गधे रख लेना, मगर खोज के निकालो। किसी ने बोला, अरे भाई तू बड़ा अजीब आदमी है, कोई गधा खोज के लेके आता है तो उसको इनाम तो देते हैं, ठीक है, मगर गधा तो ले लेंगे। मगर तू बोलता है गधा भी तेरा और उसके ऊपर इनाम भी तेरा। तब मुल्ला बोलता है, नसरुद्दीन बोलता है, खोजने का मजा तो लेने दो, खोजने का कुछ अलग मजा है, खोने का भी अपना मजा है, कुछ पाने का भी अपना आनंद है। कुछ खो के आनंदित हो जाते, कुछ पाके आनंदित हो जाते। बचपन में तो पापा के आनंदित होते रहे, माँ वो आदि हो गए, मगर कुछ खोना भी सीखना पड़ेगा, खोने का भी आनंद है, कुछ छोड़ने का भी आनंद है। सिर्फ खोज ही एक आनंद है। और खोजोगे कहां? वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में और चीजों में, चारों ओर चीजों में खोजते रहोगे, मिलेगा तो नहीं, फिर ऐसे नोटिस चिपकाना पड़ेगा सब तक। हमको नहीं पता चलता राम नाम सत्य है, हमारे जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, ये बेवकूफी है। मुर्दा कहां सुन पाता है राम नाम सत्य है? मुर्दे के कान में बोलते राम नाम सत्य है, अरे जीते जीते सुनो राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सत्संग है, इसको नहीं छोड़ना, सब छोड़ो बोलते हैं अष्टावक्र, मगर कब, उसके लिए भी समय है। यहां से बस में चढ़ने की एक आज्ञा मिली और कहीं और जाके कहते बस से उतरो भाई। अब तुम ये कहोगे कि जब उतरना ही है बस से चढ़ते क्यों है? नहीं, चढ़ते कहीं और है, उतरते कहीं और है, वहीं चढ़ के वहीं उतरना तो फायदा क्या है बस पर चढ़ने का? हाँ, सर्कस में होता है, सर्कस में चढ़ते वो क्या, वो घोड़ा होता है ना, घोड़े पर सवार हो गए, गोल चक्कर, वहीं वहीं के वहीं घूमता रहता है। इच्छाएं आशाएं तुम्हें ऐसे घुमाती रहती है, जो इच्छा उतने से तुम जहां थे, इच्छा की पूर्ति के बाद भी तुम वहीं ही आके पहुंच जाओगे। हर आशाएं, हर इच्छाएं
चंदोड़ है, जहां से चढ़ते वहीं उतरते हो, पहुंचती कहीं नहीं। घंटी भर उस पर चढ़ते तुम घूमते रहो, फिर उतरोगे वहीं। फिर कोई भी इच्छा मन में जो उठती है, कामना उठती है, वो तुम्हें वहीं पहुंचाती है। इतना सब मेहनत करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद भी जहां तुम पहले थे। सब ज्ञान सुन लिया, सुनने के बाद खाली हो गए। खाली होना है, ज्ञान मैल को धुलने का एक साबुन जैसा है। ज्ञान को भी पकड़ के नहीं बैठना, ज्ञान से परे जब निकलते तो बोध मात्र हम हैं, ये समझ में आता है। बोध स्वरूप है, खुश हो तुम। वैसे

जो अलग अलग समझ में आता है, लगता है वो अलग अलग है नहीं, एक ही है और एक ही में सब कुछ है। आप देखो, एक सेलफोन, छोटा सेलफोन में तुम बात करते हो तो वो तुम्हारे वाणी को वो सेलफोन ने चूस लिया, फिर उसको तरंग बना के छोड़ दिया आकाश में, तो छोड़ देता है वो छोटा सा सेलफोन क्या करता है, तुम्हारी वाणी को चूस करके तरंग बना के छोड़ देता है, और वह तरंग पता नहीं कहां जाके उधर दूसरे सेलफोन में फिर वो बिजली का तरंग फिर दोबारा वाणी बन के तेरे कान में आ जाता है। और जिस नंबर पर तुम लगाते वहीं पर जाके उसी नंबर पर वो लगता है। वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक लोग इसको स्ट्रिंग थियरी कहते हैं। सारा संसार एक रस्सी जैसा है, रस्सी का थोड़ा सा भी हिस्सा तुम निकालोगे तो वो पूरा रस्सी नहीं रहता। स्ट्रिंग से एक भी वस्तु इस दुनिया से खो जाए फिर दुनिया नहीं टिक सकती है। तो हर चीज दुनिया में होती है, इसका रूप रंग बदलता रहता है। बस यहां नश्वर कुछ भी नहीं है, मर शाश्वत भी कुछ भी नहीं है। यहां कोई चीज मिटती नहीं है, ये बड़ा भ्रमात्मक है, यहां कोई चीज मिटती नहीं है मगर शाश्वत भी कुछ नहीं है। वह तत्व क्या है? लेकिन अनिर्वचनीय है ये प्रकृति, अनिर्वचनीय, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। है भी नहीं भी, भास भी होता है फिर भी नहीं है, नहीं करके भी नहीं कह सकते, है करके भी नहीं कह सकते, ऐसी भी सुन माया। तुम इससे परे हो, तुम उसके मालिक हो, तुम शाश्वत निरंतर हो, पर ये तुम्हारी है। ज्ञान यह बोध तभी हो पाएगा जब शांत होता, मन विक्षिप्त बना रहे तो अनुभूति नहीं। धर्म अधर्म सब मन का ही है, सुख दुख मन का ही है, पर वो शुद्ध बुद्धि में ही बोध का अनुभूति होगी, ये महसूस होगा, मालूम होगा कि मैं बहु, मैं शाश्वत हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुछ पाने का आनंद है, कुछ खोने से भी आनंद है। रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, जैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ पता चले तो रस्सी है सांप नहीं है, तो जो घबरा